0: கபூல் 96.8 ஹிந்தி பாடல்கள்.
1: You're listening to Hindi Numbers on Only 96.8.
2: दिल से जुड़ी दिल की कड़ी, हलचल हलचल हर घड़ी।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अल्लाह को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा